सामाजिक रूपान्तर रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।

0: रेडियो साइनो 89.8 MHz तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक फीचर फ्रॉम सारेगामा।